तो मोदी जी संघर्ष गरीबी लेकर जाएंगे तो क्या कहेंगे कि भाइयों बहनों इंकलाब जय जवान जय जवान जय जवान। हेलो बोलो भारत माता करवागे तमिल विद्यार्थी कूचल करवागे स्वागत होना चाहिए। ये 18 18 कप चाय पीने वाले तब कहां थे जब मैं चाय बेटा कर रहा था।